0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

जड़ मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: अरे जलाओ
1: हेटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
2: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aage.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
7: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
8: O jo hukam meri sarkar.
7: O aa kidhar? Harry Spark wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
8: Akshara Jewelers di dooji location.
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो।
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
9: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Hanji 1674.

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: 18 and Panorama Studios production presents.
1: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam the conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो.
5: और जो हुकम मेरी सरकार.
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना. तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच.
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे.
5: आहो जी आहो.
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
7: This station is now the ultimate power in the universe.
8: Radio Haji 1674.

0: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी
2: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच। हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: Basically justice chahiye.
7: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
5: Drishyam the conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
8: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega? Batana mushkil hai.
5: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
8: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa.
5: Overseas release by Z Studios.
9: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
10: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
10: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Haji 1674.

0: एमवे बंटा है सचिन जी घर साथ में क्या मालूम है ना
1: एमवे बंटा है नवा गाना उड़ता तीर दारे है जी उड़ता तीर आयुष्मान कराना ते सारा अली खान दी फिल्म गाने गुने सुन लो हुण बैक टू बैक नवे नवे होगी ब्रेक सोमवार दा दिन छुट्टी दा दिन इंजॉय करो किंग्स बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: अच्छा सुनना एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा?
3: हां जी हां जी, ओए

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: दिन भर दे कम्मा कारा च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: दस की कर

0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
5: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Overseas released by Zee Studios.
8: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
9: हाँ जी रेडियो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।
5: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: You are listening
4: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
3: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
4: Radio Haji
3: Stay tuned।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: ஆஸ்திரேலியா விட் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவ் இதர் உதர் சித்தே அவுட் ஐ எம் அட்வைசர் அப்படி மாம்பொலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும் நாளை வரையாந்தோ ஸ்கில் விசா 186 189 190 482 491 ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்னர் விசா பேரண்ட் விசா ஜா ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக் ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லே எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ் ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ ஐ எம் அட்வைசர் கால் 02 9063 1618 ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி I am advisor.
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजास पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: सत श्री अकाल जी मैं तो अपना रविंदर गरेवाल तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
3: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
4: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
2: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
2: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
5: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
2: Overseas released by Zee Studios.
6: Hi, this is Umang Kumar aur pyar se log mujhe okay kehte hain. Aap sun rahe hain Radio Hanji 1674 AM. Keep listening.

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
4: Thank you.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हाँ जी 1674 AM

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: You are listening
2: haji haji haji haji haji haji radio haji
1: radio haji 1674 am 24/7 indian radio sydney ka apna indian radio station
2: radio haji
1: stay tuned।

0: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 186, 189, 190, 482 ਤੇ 491। ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਕਾਲ 02-9063-1618। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. You are listening.
1: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji.
3: Stay tuned.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production presents.
5: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Overseas release by Zee Studios.
8: Haan ji, haan ji, oye haan ji, haan ji,
9: haan ji radio.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसीं सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनू लगदा है कि तेरी होंद नू बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनू दुनिया दे नजारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: रेडियो हाँ जी

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Deshbhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Udhe border chal rahi hai.
3: Nahi.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: हाँ जी, हाँ जी, ओए हाँ जी, हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: रेडियो हाँ जी 1674 है।

दिन भर दे कम्मा कारा च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Overseas release by Zee Studios.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आदगुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जे जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हरंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आनंद न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लागे बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अनकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइय नानक गुरमुख परमगत पाइय
1: सूटत नाही।

0: ऊपर छाम जहां तिरखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है।
1: भगजना की बर्तन नाम संजना कै मन विश्राम।
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट।
1: हर जस कर सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार।
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान।
1: मंत्र रंग रति रंग एक है नानक जन के बिरद विवेक है।
0: हर का नाम जन को मुक्त ज्योत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत।
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग।
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई।
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछना है बिजो।
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा।
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना।
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते।
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का पात परगटनी छपै।
1: हर की भगत मत पौ करे नानक जन संकेते तरै।
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा।
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै।
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है।
0: नाम तुलका छबर न हुए नानक गुरमुख नाम पावे जन कुए।
1: सुखमनि सुख अमृत पव नाम भगजना कै मन विश्राम। अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान।
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्ये फिरिया।
1: अनक प्रकार की है बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रत्ना।
0: शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भांति।
1: नहीं तुल राव नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक वार।
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीवै महा उदास पीसर थी वै।
1: अगन माए हो प्राण कनक अस है वो नाम।
0: न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयमत साधन।
1: निमक निमक कर शीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे।
0: हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे।
1: मन कामना तीरथ दे छुटै गर्व गुमान न मन ते हुटै।
0: सोच करे दिन सा रात मन की मैल न तन ते जात।
1: देही को बो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे।
0: जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध कहां होए काची पी।
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच।
0: बहुत स्यान जों का भाव व्यापै अनक जतन का तृष्णा त्रापै।
1: एक अनेक गन्नी बूझै कोट पाव दरगै नहीं सीजै।
0: छूट सनाही उब पायाल मोहे व्यापै माया जाल।
1: अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिन नी माने।
0: हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए।
1: चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै।
0: जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सर गावै।
1: जे को अपनी शोभा लोरे सा सिंह ए हो मैं छोरे।
0: जे को जन मरण ते डारै साजना की शरणी पारै।
1: जिसन को पव दस पिया सा नानक ताकै बल बल जासा।
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाकै मिटे बिमान।
1: आपस को जो जाना नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा।
0: जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना।
1: मन अपने ते बुरा मटाना पेखै सगल शिष्ट साजना।
0: सुख दुख जन सम दृष्टि ता नानक पापो नहीं लेपा।
1: निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ।
0: निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को दे बहुदान।
1: कर्ण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी।
0: अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते।
1: तुमरे उस्त तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए।
0: सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म।
1: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया।
0: सगल उद्यम मैं उद्यम भाला हर का नाम जपो जी सदा।
1: सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।
0: सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जी घट बसै हर नाम।
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगजना कै मन विश्राम। अठ तीन श्लोक
0: निर्गुण यार ए आनिया सो प्रभ सदा संभाल। जिनकी आतिश्चित रख नानक निभि नाल। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
1: मैया की गुणचित परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी।
0: जिंतु साठ सवार सिगारिया गर्भ अगन मह जिने उबारिया।
1: बार बस्ता तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद।
0: बिरद पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन।
1: एहो निर्गुण गुण कुछु न बूझै बख्श देहो तो नानक सीजै।
0: जय प्रसाद धार ऊपर सुख बस है सुत परात मीत बनता संघर्ष है।
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला।
0: जय प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा।
1: दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना।
0: ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे।
1: आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार।
0: जाकी सेवा नम निद पावे तासो मूड़ा मन हिलावे।
1: जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे।
0: जाकी टहल पावे दरगै मान तिसह बसारे मुग्ध अजान।
1: सदा सदा भूलन हार नानक राखन हार अपार।
0: रतन त्या कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै।
1: जो छना सो अस्त्र करमान जो होवन सो दूर परान।
0: छोड़ जाए तिसका शर्म करै संग सहाई तिस पर हारे।
1: चंदन ले पुधारे तोए घर तो पी प्रसम संग होए।
0: अंध कूप मैं पतत विकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल।
1: दूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात।
0: बाहर भेख अंतर मल माया छप सनाहे कछ करे छपाया।
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लो स्वान।
0: अंतर अग्न बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह।

0: अंतर बसे प्रभा अपना तेजन सहज समार
1: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो उड़न बिहावे
0: कहा बुजात बुजे डोरा निष्किय तो समझे भोरा
1: कहा विष्ण पर गावे गुंग जतन करे तो पीसुर भंग
0: कहा पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन
1: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे
0: संग सहाय सो आवे न चीत जो बह राय ता सो प्रीत
1: बलुआ के ग्रह पीतर वसे आनंद केल माया रंग रसे
0: कर माने मने प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत
1: वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह
0: यह जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म
1: ठूठा कर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम भारत तेरे तुमरी कृपा मैं सुगनेरे
1: कोई न जाने तुमरांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी
1: तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भजना कह मन विश्राम अठ चार श्लोक
1: दीन हार प्रव छोड़ कह लाग आन सुआए नान कहू नसी जई बिना वै पत जाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण भी खोट गवावे
1: एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे
0: जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास
0: अपनी अमान कछ बहुर साले ज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी बस सागे राख है पप की आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक पांत माया के हे सर पर होत जान अनेक
1: बिरह की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
0: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
1: बटाऊ स्यों जो लावे नेहे ताको हाथ न आवे के हे
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
0: मिथ्या चिन्ह पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
0: बिन मुझे मिथ्या सब है सफल दे नानक हर हर नाम ले
1: बिरथी साक्त की आर जा साच बिना कह होवत सूचा
0: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निदार दाम
1: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
0: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन
0: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसका अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम भाने तिन पर जाता नानक उंजन चन पराता
1: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मानै
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा
1: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत
0: पावे तिसले लड़ लाए थान थनंत रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज श्लोक
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रशर नागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याका तब लुभावे
0: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन अठ पहता का जस गवी जय
1: जय प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद ते रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: प्रभु जी जप्त दर गए मान पावे नानक पत सेती कर जावे
0: जय प्रसाद और कंचन देही लिवलाओ तिस नाम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभु ठाकर प्रभुता कह
1: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद आबू खन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरो प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
1: सहते आ जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करे पुन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Very Be Toyota, the smart choice.

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun hai.
0: Master kaun hai. अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया. अब 360 डिग्रीज का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें.
1: विक्टिम मींस कौन? स्लेव मींस कौन? जो गुलाम है, जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का. और एक है जो अपने मन का गुलाम है, जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है. और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते, एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And at that time I say, you irritate me. Right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं, मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन, ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड, वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा ना.
1: मैंने सोचा भी नहीं
0: है मैं अपने आप को बोलूं. मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है कि माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है तो किसी का मोबाइल बज जाता है, अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर

0: अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
1: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
0: हाँ ये सब चीजें, ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
1: ये थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें,
0: राइट, कितनी सारी थॉट्स, सी ये थॉट्स किसने क्रिएट की, मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना। आपने प्लास्टिक की आवाज की लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की, वो मैंने की। व्हाट इज द इरिटेशन, हियर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, लेट अस चेक, व्हाट इज द इरिटेशन, द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स व्हिच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज।
1: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप मुझे वो चीज मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहा है,
0: वो
1: मैं नहीं कर रहा हूँ।
0: एक प्लास्टिक का पैकेट, एक बॉल पेन का टिक टिक,
1: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी,
0: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी। थॉट कहाँ क्रिएट होती है,
1: मुझ में क्रिएट हो रही है ना, उसके
0: यहाँ क्रिएट हो रही है ना,
1: मेरा
0: मन कहाँ पे, यहाँ थॉट क्रिएट हो रही है, यहाँ प्लास्टिक बज रहा है, वहाँ बॉल पेन टिक टिक हो रहा है, वहाँ मोबाइल बज रहा है, वहाँ थॉट क्रिएट हो रही है, यहाँ किसने क्रिएट की,
1: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने,
0: बट उस बॉल पेन
1: के बिहेवियर ने,
0: इनके बिहेवियर यहाँ है, आपका बिहेवियर यहाँ है,
1: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना,
0: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना, अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बिहेवियर यहाँ है, लेट से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है, आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ। आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है, वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है, यहाँ वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा,
1: उसकी वजह से हो रहा है,
0: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है,
1: कोई दुनिया में चुनता है कि इरिटेशन की, आपने बोला कि आई क्रिएट, आई चूज, आई एम
0: आस्क आवर सेल्फ एंड लेट्स चेक इट इमीडिएटली। 100 लोग बैठे हैं आसपास इस मूवी थिएटर में, बीच में सेंटर में कोई फोन बजाए या प्लास्टिक आवाज आई, सब 100 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे,
1: कोई बुड़बुड़ करके करेगा, कोई जोर से करेगा, कोई मनी में करेगा, कोई ये चाहेगा यार कोई तो उसको बोले, मैं तो नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है,
0: राइट,
1: तो
0: अलग अलग थॉट्स ना, तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया,
1: जी
0: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट,
1: सब अलग अलग आदमी ने,
0: क्रिएटर कौन है वो फाइनल,
1: मैं क्रिएटर हूँ,
0: प्लास्टिक
1: मुझमें क्रिएट हो रही है,
0: ये पक्का,
1: ये 100% वो प्लास्टिक और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ,
0: वो भी कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है, कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चूर चूर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है, वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग, दैट इज इरिटेटिंग,
1: दैट
0: पर्सन इज ऑल्सो इरिटेटिंग, बिकॉज दैट पर्सन्स बिहेवियर कॉज्ड मी to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी. एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा. जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना, एग्जाम में जाने से पहले प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन, ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है, उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहाँ है, यहाँ तक सीमित है, कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा,

0: क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा, यू नो, लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल सी दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ।
1: 10 सेकंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला, जब आप बात कर रही थी तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई, वो तो एक्सेप्टेड था ना,
0: एक्सेप्ट
1: क्योंकि हम जंगल में हैं,
0: राइट,
1: चिड़िया बोलेगी कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
0: राइट,
1: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
0: एक्सेप्टेड है, लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे नॉट एक्सेप्टेड।
1: अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ,
0: हाँ ये भी है ना, बाहर खाओ, ये नहीं मालूम आपको, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं,
1: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं,
0: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन,
1: करेक्ट,
0: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट is causing me pain. I want happiness in life. Please change. ये equation हमने बना ली जीवन की. आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज. सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं,
1: यही
0: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना.
1: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है,
0: वो भी ठीक है. अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है,
1: बट इरिटेटेड नहीं होना है, ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको, लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
0: वो भी इरिटेशन,
1: देखो
0: सी, एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो
1: एक
0: भी
1: तो लिफ्ट दूं,
0: नहीं नहीं वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं,
1: और ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
0: ब्लेम किया, उसको किया,
1: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, कर्टेसी नहीं चाहिए,
0: नहीं नहीं परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइन्स आर सो ब्यूटिफुल, उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
1: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
0: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
1: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया,
0: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स, लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल. मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल.
1: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना,
0: मजबूर मतलब मजबूर कौन होता है, जो गुलाम होता है.
1: प्रैक्टिकल में देखो, आप
0: प्रैक्टिकल में
1: आप यहाँ बैठे हैं,
0: हाँ,
1: धूप लग रही है,
0: राइट,
1: तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है,
0: परफेक्ट,
1: और छांव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा, अच्छा है,
0: परफेक्ट
1: बोलेंगे. इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोलूंगा सब कुछ बुरा लगा.
0: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, उतनी देर में
1: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए,
0: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस. अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है. उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है. अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना,
1: नहीं उससे बड़ी चीज याद आएगी.
0: अब वो बात गई,
1: वो गई,
0: अब वो थॉट गई. अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर. हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्युलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की. जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्युलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड, अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए. अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया, एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडेज स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, एंड आई केप थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल, द मार्केट. यू नो मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है, उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर, अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई, अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें अभी उसके सामने, गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात, फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया, लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
1: सब हिला दिया था,
0: हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया, ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
1: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो,
0: यस
1: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ
0: right.
1: वो मेरा 1-0 से शुरू होगा,
0: एब्सोल्युटली
1: 61-62 शुरू होगा,
0: एब्सोल्युटली
1: 0-10 नहीं होगा,
0: नहीं होगा, क्योंकि मैं
1: ऑलरेडी 75 आना है तो 60+75 होगा,
0: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट, एंड आई विल बी लाइक फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है, उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है, अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे,
1: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
0: Now
1: और प्रॉब्लम,
0: गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट, अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट्स से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
1: सिर्फ कि
0: फैमिली में कुछ हुआ है, यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन, तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा या जो भी वो थॉट्स आएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस, लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड chaos. Why today we said that there is chaos in our mind? क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, ये कभी कभी आता है जीवन में, सिर्फ ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये दो बार,
1: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई, जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का,
0: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी, दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन, डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशंस, हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ, लेट अस ओनली
1: शुरुआत कैसे करें,
0: छोटी छोटी बातों में, एंड छोटी बातें में
1: चिप्स वाली बात, चिबड़े वाली बात, वो
0: कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रखती या जोर से दरवाजा,
1: भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें,
0: वहीं बैठे, इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट, लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी, हे मन मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो, शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम स्लेव, स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है, अपने मन के मास्टर रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर दो थॉट्स क्रिएट कर ली ना, दैट्स ऑल दैट वाज नीडेड, 50 थॉट नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए, बस कर दिया ना उन्होंने वो, ठीक है उनको नहीं आता था कैसे करना है ना, नेक्स्ट टाइम आई विल चूज,
1: चिवड़ा चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही तो आवाज बंद हो जाएगी,
0: नहीं भी आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
1: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
0: यस तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट क्यों एक्सेप्ट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दिस क्लैरिटी, ये नॉलेज, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, ये इक्वेशन फिक्स्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट। हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है थॉट। जैसे आपने कहा ना, मैं चूज थोड़ी कर रहा हूं गंदी वाली थॉट क्रिएट करनी है, अगर मैं चूज करता तो अच्छी वाली करता। कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने चूज थोड़ी किया। चूज कैसे करना, दैट्स अ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज ओनली हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट, एंड फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर आर नाउ वी गोइंग टू से दे आर इरिटेटिंग, दे इरिटेट मी। नो, गेट इरिटेटेड, बट नाउ द लैंग्वेज विल हैव टू बी आई क्रिएट इरिटेशन इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर। सो ये अब इंटरेस्टिंग गेम हमें सारा दिन खेलने हैं कि सिचुएशन, लोग, मेरा मन, दो एंटिटीज है।
1: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
0: गेम है ना, दो चीजें हैं।
1: मेरे कान में दर्द होता है वो देखिए, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है।
0: चलो, इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट? राइट, नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माई माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब।
1: इसको एक बार बोलूंगा, हाँ, पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी।
0: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे। ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं। व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जिएंगे। आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस को हर समय अब सारा दिन आज रखना है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया, फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे। एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है।
1: छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं है।
0: ठीक है,
1: अब उसको कैसे बोलूं कि भाई मत डाल, पूछ तो लो।
0: हाँ, कैसे बोल सकते हैं?
1: एक बार बोला, हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपको खाना है बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई।
0: हाँ?
1: हाँ? मुझे चावल खाने, रोटी दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी।
0: ठीक है,
1: अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे, आप पता नहीं क्या, आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं? बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन मुझमें है।
0: नो नो, वी हैव टू, वेरी फाइन, व्हाट्स द सोल्यूशन? लेट्स आस्क मी, आई आस्क माय सेल्फ, व्हाट्स द सोल्यूशन?
1: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो।
0: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो। सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ। लेट्स से आप यहाँ हैं, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ। सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू
1: जी,
0: इवन इफ आई फील दिस इज
1: ईजियर। चलिए, पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ में।
0: मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे। हाँ, तो आप इरिटेट नहीं कर रहे थे
1: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। मैं पहले तीन एपिसोड्स में मैं चिल्ला तो रहा था,
0: अब
1: तब आप कैसे शांत थे ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे।
0: Because
1: आपने वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये?
0: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था,
1: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे।
0: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में, पहले हम सिचुएशन में देख लें। सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं,
1: बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा
0: ठीक
1: था।
0: ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है, या तो एक आपको कंट्रोल करो, आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
1: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग,
0: डोंट डिस्टर्ब,
1: ताकि मेरा फ्लो टूटता है। आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने,
0: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं। दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है, अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब, फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए।
1: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं और मैं बोल देता हूँ कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलूँ ना।
0: राइट, अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब
1: ये भी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया।
0: दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है, अवेयरनेस नहीं होगी। इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया, अवेयरनेस नहीं है, 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है। अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है। ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें, दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेइंग कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर, देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमें
1: क्या ये हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की?
0: नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज, सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी,
1: तो आई वॉन्ट टू से
0: आई वॉन्ट टू से इट टू द अदर पर्सन, लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात ये हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। और दूसरी चीज ये है मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
1: वातावरण खराब होता है मेरे,
0: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये चीज सारा दिन देखनी है, कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
1: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
0: इंस्ट्रक्शन भी देना है। हाँ,
1: तो भी आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: एब्सोल्युटली, एंड व्हाई यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर, दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट फॉर योर पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी पीसफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हम इजंट इट फॉर माय पीस?
0: नो, यू आर ऑलरेडी पीसफुल बिकॉज यू डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड।
1: अच्छा, क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा
0: दिया। कंट्रोल मतलब आई डिड नॉट गेट फ्लक्चुएट, आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए,
1: तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ।
0: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है, तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माय पीस ऑफ माइंड। माय पीस ऑफ माइंड नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनूं। जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं, पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो, तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? दैट्स अ स्लेव, स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर।
1: पहले स्लेव टू योरसेल्फ भी तो हो गए।
0: जो स्लेव टू योरसेल्फ है वही तो फिर स्लेव टू पीपल्स बिहेवियर। तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक।
1: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर। मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है, तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट

0: temiz havlu sonucu cinceli gelme.
1: Evet.
0: O cemim cinin ben de dedim derin falan ya.
1: Hı.
0: O puraniye ya.
1: जिन जिन डब खड़ा बजा होगा ना तत्ता ठंडा होगा वो ना थैंक यू ये सन साडे नाल लाल जी ते हुण इजाजत लैन का समा हो गया जी तुहाडे कोलों लाफ्टर थैरेपी दे विचों बहुत बहुत शुक्रिया जी लक्की असी जी कहिंदे ने कि रब जो करदा चंगे लई करदा सोचो जे इंसानां दे कन्न ना हुंदे तां मास्क लगाउण लई किल ठोकणे पैणे सी थैंक यू लक्किया सी जी बहुत सोहणे बहुत वधिया जसपाल जी सति श्री अकाल गुड मॉर्निंग भेजदे ने बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी ते राकेश कुमार जी कहिंदे ने कि सरबत दे भले दी अरदास करदे आं ते तुहानूं तुहाडे स्रोतियां नूं चंगी सेहत तंदरुस्ती चढ़दी कला दी अरदास हासदे वसदे रहो मुहब्बतां दा हर पासे वास होवे ते मनोकामनावां सब दीआं पूरीआं होण परत तों पाउंदे ने सांझां ते हुण तुहाडे कोलों लैंदे आं इजाजतां हसदे खेडदे चढ़दी कला च रहो सुणदे रहो रेडियो हांजी 1674 AM
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: यू आर लिसनिंग
5: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन
4: रेडियो हांजी स्टे ट्यून्ड
6: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Woh ye border chal rahi hai?
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
8: Hun thode modde naal modda mila ke thodi tarakki di raah nu hor vi saukha ate surakshit banaun da vaada karda hai very big Toyota.
9: Jithe hai Toyota di best technology, best customer सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज, तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
8: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आई एम ई एडवाइजर।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd October।
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.
4: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.
5: Rich Boy.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: सतकाल, मैं हां जी शेर गिल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।